उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मौत की खबर सुनने के लिए आप गौर करें। एंस्कदे से रिश्तेदार दाहू बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कि गुजरे सनिचर को 74 साल की उम्र में फिरन जीफन तखियार और बेगम साहिबा एतमी दाहू का खाविंद लड़कन फाजिया फाजिल और फाइज की वालिद, एक बहू का ससुर, सभी लड़कन के नाना और दादा। एंस्कदे लात्रोप ब्रिंक का रहने वाला साहब मोहम्मद अजीज दाहू की वफात एंस्कदे में हो गई है। रबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। एंस्कदे से रिश्तेदार दाहू बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं, गुजरे सनिचर को 74 साल की उम्र में फिरन जीफन तखियार औत बेगम साहिबा एतमी दाहू का खाविंद लड़कन फाजिया फाजिल और फाइज के वालिद, एक बहू का ससुर और सभी लड़कन के नाना और दादा। एंस्कदे लात्रोब्रिंक का रहने वाला साहब मोहम्मद अजीज दाहू की वफात एंस्कदे में हो गई है। इन्हें लोग रबी के नाम से पहचानते और पुकारते थे। दीदार आप कर सकेंगे आज मंगलवार को स्टिफ्टिंग फैजन ए मदीना में, पता है फ्लीरस्ट्रैट 91 फ्लीरस्ट्रैट 99 एंस्कदे में। आज दिन में 1:30 बजे जनाजा नमाज पढ़े जाएंगे और आज दिन में 2:30 बजे हालफदरी इन्हें खुरुनदाल कब्रस्थान पर दफनाए जाएंगे, पता है विलम द क्लैरक्सरात 93 आलमलो में। और मालूमात के लिए तार का नंबर है 06 47 44 20 सुनने वालों से गुजारिश है खबर को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो इन रिश्तेदारों की गमी में शरीक है।

हर एक सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। आप सभी सुनने वालों को आदाब और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। आज मैं एक के बाद एक हल्के स्वरों में नगमे चुने हैं। आप इत्मीनान से सुकून के साथ प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। ये प्रोग्राम आमस्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। शुरू करती हूँ भजन से, तर्स है राम राम तो सबका रखवाला, जब जब भी ये मन घबराया तूने आन संभाला।

तू सबका रखवाला। भजन आपने अभी मोहम्मद रफी साहब से सुना। खूबसूरत जिंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती है, बल्कि उसकी तामीर रोजाना की दुआओं पर होती है। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से।

सुनते हैं कि मिल जाते हैं हर चीज दुआ से। प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था भक्ति और मजहबी संगीत। अब हम गजल शौकीन वालों के लिए कुछ गजलें सुनवाएंगे। मोहब्बत मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो छोड़ भी जाए तो किसी और का ना हो पाए।

किया है प्यार करेंगे, शहनशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये गजल। कश्ती भी नहीं बदली, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौके सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ऐ जज्बाए दिल, गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए।

जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। दिल छू लेने वाले गजल पेश थी नयारा नूर की मीठी आवाज में। कुछ नहीं मिलता जितनी मर्जी वफा कर लो किसी से, जब वक्त वफा ना करे तो वफादार भी बेवफा हो जाते हैं। तेरी बेवफाई का शुक्रिया, मुझे तूने जीना सिखा दिया।

सफाई का शुक्रिया। चंदन दास से पेश थी ये गजल, कलाम था सबा अफगानी का। अगली गजल सुनाने को जा रहा है शहद भरी आवाज में विनोद सहगल।

सूरत अंदाज में पेश थी ये गजल जिगर मुराद आबादी का कलाम और जगजीत सिंह की मौसिकी थी। अब हम आपको ले चलते हैं उस सुनहरी दौर में जिसमें आपकी मीठी यादें जुड़ी है। गीत सुनाने से पहले अर्ज है, फिर हुआ तमाशा गली में आज सुबह, वो थे मेरे सामने, मैं उसे वो मुझे देख रहे थे। फिर क्या हुआ? हाँ, वही जो अक्सर होता आया है, लोग हमें देखते रहे क्योंकि वो गली पार करके सामने थे।

का गीत पेश था मुखर्जी और चित्तलकर की आवाजों में पेश था ये दो गाना, श्री रामचंद्र का सजाया गीत और गोपाल सिंह नेपाली का बोल था। दिल के कोने में दबी हुई यादें फिर ताजा तो हो गई होगे ना, ये दास्ताने गमे दिल कहाँ कहीं जाए, यहाँ तो खुल के कोई बात भी ना की जाए, ऐ गमे दिल क्या करूं।

सरदार मल्लिक का संगीत रचना गायिका थी आशा भोसले। ये सच है पहले प्यार ही बसा रहता है ख्यालों में। तुम मेरी बेबसी देखो मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता।

मन्नते से पेश था ये नगमा और ये फिल्म बहके कदम से लिया है उषा खन्ना की मौसिकी थी नगमात धर्मेश दत्त का। खो गया जाने कहाँ आरजुओं का जहाँ, ढलता हुआ सूरज भी अब कहने लगा है मुझसे, कल फिर से आऊंगा एक नई सुबह के संग, नई उम्मीदों के संग।

खो गया जाने कहां, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमे सुनकर। महान शायर राजेंद्र कृष्ण का गीत रचना, संगीत रचना मदन मोहन का, आवाज थी हेमंत कुमार की। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहब से अगला गीत।

सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। फिल्मी दुनिया में हम कई हफ्तों से महान गायक मुकेश चंद माथुर के बारे में बयां कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में शायद आप सुने होंगे कि मुकेश का अरमान था अदाकार बनने को, इसलिए वो बिना अपने वालदैन की इजाजत से बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में वो अदाकार मोतीलाल के साथ रहते थे। मोतीलाल को मुकेश की आवाज पसंद था। वो चाहते थे कि मुकेश संगीत पर तवज्जो दे। इसलिए जब मोतीलाल ने फिल्म पहली नजर में काम कर रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म के पेशकश और हिदायतकार से दरख्वास्त किया था मुकेश को इस फिल्म में गवाने को। फिल्म पहली नजर में संगीत दिया था अनिल विश्वास। मुकेश से मिलने के बाद संगीतकार अनिल विश्वास ने मुकेश से दिन तारीख तय कर चुके थे रिकॉर्डिंग के लिए। पिछले प्रोग्राम में आप शायद सुने होंगे कि रिकॉर्डिंग का दिन मुकेश ने अनिल विश्वास को घंटों इंतजार कराया था। उसने मुकेश को स्टूडियो में ना देखकर बहुत नाराज हुआ था। फिर अपने नौकर को हिदायत दी मुकेश को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को। मुकेश जब नौकर को देखा तब उसे याद आया कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। कहानी दिलचस्प है, आगे सुनेंगे एक गीत के बाद।

मुकेश की आवाज में आपने अभी ये गीत सुना। तो जैसे हमने इस गीत से पहले कहा, मुकेश ने जब नौकर को पहचाना तो अपने दोस्तों से घबराया हुए कहा कि आज उनका रिकॉर्डिंग था और साहेब अनिल विश्वास इंतजार कर रहे होंगे। फिर दौड़ते दौड़ते मुकेश ने स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो में सन्नाटा छाई हुई थी। वो एक अपराधी की तरह नजरें झुकाए अनिल विश्वास के सामने खड़े थे और कहा, साहेब मुझे माफ कर दो। अनिल विश्वास ने मुकेश को इतना जल्द माफ नहीं किया। मुकेश को खूब भला बुरा कहा, उनके गलतियां को एहसास दिलाए कि वो गैर जिम्मेदारी की काम किया था। मुकेश रोने लगे, रोते रोते कई बार माफी मांगा। फिर अनिल विश्वास ने उनसे कहा, तुम जाकर अपना हाथ मुंह धोकर मेरे पास स्टूडियो में वापस आना। बिना एक शब्द कहते हुए चुपचाप मुकेश स्टूडियो में आए, अनिल विश्वास के सामने खड़े हो गए और रिकॉर्डिंग के लिए एकदम तैयार हो गया था। मुकेश ने अपने दिल के सारे दर्द एक साथ समेट कर इस गीत में डाल दिया और इस गीत का नतीजा आप खुद सुनिए।

दिल जलता है तो जलने दो, कितना दर्द कितना कशिश था मुकेश की आवाज में। लगता था जैसे सारी दुनिया का दर्द उसमें समाई हुई थी। इस गीत को जब आप गौर से सुनेंगे तो इसमें कुंदनलाल सहगल की गायकी महसूस करेंगे। मुकेश का ये गीत सुनकर सहगल अपने आप पर फखर महसूस किया। उसे यकीन होने लगा कि उनकी आवाज को नकल करने वाले और लोग हैं। लेकिन जब वो मुकेश से खुद मिलकर बात की तब सहगल को एहसास हुआ कि मुकेश उससे बेहतर फनकार था। फिर वो अपना हारमोनियम अपना अमानत उसे तोहफा में दिया। मुकेश की संगीत सफर कैसे शुरू हुई हमने बयां किया। उससे गाने में कोई शौक नहीं था, वो अदाकार बनना चाहते थे, लेकिन उनकी तकदीर उसे क्या से क्या बना दिया। वो हम सबकी एक रूहानी सौगात है, आज भी हम उनके नगमों से लुत्फ उठाते हैं।

0: निहाल के कब तक जी बहलाएगा ए प्यासे दिल बेजुबान।
1: अब हम मुकेश की निजी जिंदगी की पर्दे के पीछे जरा सा झांक कर देखेंगे ये कैसे थी, ये तो आप जरूर जानना चाहोगे। बात है नेहतीन द्रियफेयर तक की। मुकेश की अभी कोई खास पहचान नहीं थी। बॉम्बे में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऐसे मुश्किल की घड़ी में इस हालात में वो अपने परिवार के पास दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, वो कुछ बनकर जान दिखाना चाहते थे। हिम्मत उनका बुलंद था, वो हिम्मत कभी नहीं हारा। बस एक वक्त की रोटी वो कमा लेते थे। तो इसी दौरान मुकेश की मुलाकात मन्नू भाई त्रिवेदी से हुई। मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती में बदल गई और इसी तरह एक दूसरे के घर में आना जाना की राह भी बन गई। मन्नू भाई त्रिवेदी की एक खूबसूरत बहन थी बच्ची बेन। पहली नजर में आपस को देखते ही प्यार की कौंपले फूटी। इसका एहसास किसी को नहीं हुआ, पर प्यार ऐसा जज्बा है जो अंदर ही अंदर सुलगता है, जिसका एहसास उस वक्त होता है जब जुदाई की घड़ी रूबरू होती है। क्योंकि वो दिन जब मुकेश की मुलाकात बच्ची बहन से नहीं हो सकती थी तो उसे लगता था कि कहीं वो कुछ खो गया है, और ये एहसास बच्ची बहन को भी महसूस होती थी। पर हाँ, किसी ने खूब कहा, फूल की खुशबू और इश्क की रंगत कभी छिपाए से नहीं छिपती। कब तलक? आखिर एक दिन मन्नू भाई त्रिवेदी और घर वालों को इस खामोशी मोहब्बत पर यकीन हो गया, एहसास हो गया था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मन्नू भाई को मुकेश की ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। मुकेश से जब घर वालों इसके बारे में जिक्र किए तो वो घबरा गए और अपना जुबान से कुछ कहा नहीं। मन्नू भाई ने मुकेश पर इतना नाराज हुआ, उसे खबरदार किया और कहा, आज से तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर इश्क पर किसी का जोर चला है जो इसे रोक सके? मुकेश को अपनी बच्ची बहन से जुड़ा होकर मजनू की हालत जैसे हो गया था। बेचैन था, अपने प्यार को दीदार के लिए घंटों तक बच्ची बहन के घर के सामने खड़े रहते थे और प्यार का

जी हाँ, इस गीत के एक एक शब्द मुकेश की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई थी। यह सच है, हकीकत है। इश्क पर जोर नहीं, फिर भी कितने हैं जो प्यार का दुश्मन हो जाते हैं। बच्ची बहन मुकेश की दिल की चैन था, जब तक वो अपने प्यार का एक झलक ना देख लेता, डर से वो हिलता नहीं था। ठंड और बारिश की परवाह वो नहीं करते थे। मुकेश और मन्नू भाई की दोस्ती में दरार पड़ गया था। घर की दरवाजा मुकेश के लिए बंद था और घर वालों ने बच्ची बहन पर पहरेदारी कर रहे थे। उसे सख्त मना था बाहर जाने को। नौबत यहां तक आई थी कि मुकेश को अब ना अदाकारी में और ना संगीत में दिल लगता था। बच्ची बहन की घर की आसपास घूमते रहते थे कि शायद बच्ची एक बार घर से बाहर कदम रख दे, पर ये नहीं हुआ। और कब तक मुकेश मजनू की तरह घर की आसपास फिरते रहे। पर कैसे दोनों में पहली मुलाकात हुई, मुकेश ने एक तरकीब सोचा। उसे एहसास था कि बच्ची बहन हर सोमवार को अपने पास की शिव मंदिर में पूजा करने जाती है, लेकिन अब वो अकेले नहीं जाती थी। हमेशा उसके साथ कोई ना कोई साथ रहते थे। मुकेश उसे सिर्फ दूर से देखकर अपने आप को तसल्ली कर लेते थे। जब घर वालों को यकीन हो गए कि दोनों आपस को भूल गए, तो बच्ची बहन के साथ मंदिर जाना छोड़ दिए। मुकेश ने इसका फायदा उठाए अपने प्यार से मिलने को। इसी तरह दोनों हर सोमवार को छुपकर मिलते रहते थे। लेकिन दुनिया वालों को दो मोहब्बत भरे प्रेमियों को पल भर की मुलाकात भी बर्दाश्त नहीं हुई, और इन दोनों का छुपकर मिलने की खबर घर तक पहुंच गई। फिर दोबारा बच्ची बहन का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। मुकेश ने सोचा, मेरा प्यार को कब तक कैद में रखेंगे। ये दूरियां कुछ हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उनका हौसला बुलंद था। बच्ची बहन पर अब सख्त पहरेदारी थी, यहां तक कि रात को दरवाजे के सामने बैठकर रखवाले करते थे। बच्ची बहन घर की चार दीवारी में कैदी की तरह रात और दिन रोते रहते थे।

से भुलाना। इस गीत से हम महसूस कर सकते हैं कि मुकेश पर क्या बीते होंगे अपनी मोहब्बत से जुड़ा होते हुए। दो प्यार करने वालों को ये जालिम दुनिया वाले कब तक जुदा करते। इतना कोशिश करने की बावजूद इन दोनों प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर पाए। एक बात तो सच है, दो प्यार करने वालों की जुदाई में मोहब्बत और मजबूत होती है मिलने के बाद। मुकेश को एक ही सवाल बार बार उठता था कि कैसे बच्ची बहन से मिल सके, और मिलने के बाद उसे फौरन मंदिर में शादी करना चाहते थे। बॉम्बे में अपना तो कोई नहीं था, एक दोस्त था मन्नू भाई त्रिवेदी, वो भी अब उनका दुश्मन था। आखिर वो अदाकार मोतीलाल को अपना राजदार बनाया। मोतीलाल से वो अपना दिल का हाल बतलाए। मोतीलाल को मुकेश की इन बातें सुनकर बड़ा सदमा पहुंचा और कहा कि इतना सब कुछ तुमने अकेले सहा और अब मेरे पास आए हो। मुश्किल की घड़ी में आप ही तो है बॉम्बे में जिसे हम याद करते हैं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुकेश ने कहा कि उसे एहसास नहीं था कि दो प्यार करने वालों के बीच इतना कांटे बिछाए जाते हैं। मोतीलाल ने मुकेश की बातों पर एक तरकीब सोचा, जैसे फिल्मों में होता है बिल्कुल उसी तरह। उसने कहा, लड़की पाने के लिए तुमको मेरा कहना मानना पड़ेगा, तुम मौके का इंतजार करना, जैसे मौका मिले बच्ची बहन को खबर पहुंचा देना कि वो सोमवार को शिव मंदिर जरूर आ जाए। ये खबर तो बच्ची बहन के पास पहुंच गई किसी ना किसी तरीके से, लेकिन घर से निकलना नामुमकिन था। उनके हर कदम पर निगाहें थे। करे तो क्या करे, सोमवार को उसे अपने महबूब से मिलना था, मिलकर हमेशा के लिए एक होना था। बच्ची बहन जिद करने लगे, अपने माँ बाप से कहा कि वो सोमवार को सारा दिन व्रत रखेंगी और मंदिर में पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। लेकिन उनके वालिद ये बात से सहमत नहीं था और बच्ची को शिव मंदिर जाने को मना कर दिया। क्या बच्ची बहन सोमवार को शिव मंदिर जा पाएंगे, अपने महबूब से मुलाकात कर पाएंगे? कहानी दिलचस्प है, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम तक।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान गायक मुकेश जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जो बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।

मतलब का गाना पेश था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत रचना, गीत रचना वर्मा मल्लिक का। अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।

पाकिज़ा का नगमा पेश था मौसिकार गुलाम मोहम्मद की, मौसिकी और शायर कैफी अजमी का कलाम था। क्यों ना आज बदले रस्मी जहां, मोहब्बत को छोड़कर, मोहब्बत को छोड़कर महबूब को आग लगा दी जाए। तो हाँ, लगा चुनरी में दाग, अब छुपाऊं कैसे।

चुनरी में दाग फिल्म दिल ही तो है में से ये गीत लिया। स्वर थी मन्ना दे की, संगीत से सवारे थे रोशन और साहिर लुधियानवी का लिखा तर्ज था। इतनी कशिश तो निगाहे शौक में साकी, इधर इधर दिल में ख्याल आए, उधर उधर वो बेकरार हो जाए। ओ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार।

सदाबहार नगमा पेश था स्वर थी लता मंगेशकर की, संगीत से सवारे थे संगीतकार हेमंत कुमार और कैफी अजमी का लिखा तर्ज था। अगला गीत आइए सुने हेमंत कुमार की आवाज में।

प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। वो नजर यूं उठी यूं झुकी यूं रुकी, हम तो बस थामे जिगर देखते रहे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है, क्या कह रही है, कि दीवाना हो गया।

शायराना अंदाज में पेश था ये नगमा नगमात ऐश कंवल का मौसिकी लाला सर सत्तार का। अगला नगमा आइए सुने, स्वर है आशा भोसले की।

जी हाँ, कितना हसी है ये जहाँ, खूबसूरत अंदाज में ये गीत पेश था। ओपी नैयर संगीत से सवारे थे, बोल हसरत जयपुरी का। तेरे ख्याल में कुछ ऐसे गुम रहा बरसो, मैं अपने आप से भी मिल नहीं सका बरसो। तुम्हारे हाथ के दस्तक की आस में मोहसिन, मैं अपने घर से कहीं भी नहीं गए बरसों।

तो ख्याल आए, संगीतकार रवि का गीत रचना साही लुधियानवी का, आवाज थी महेंद्र कपूर की। सुबह की किरण आंखें मल मल कर देख रही है, नई सुबह नया दिन एक शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, सवेरे का सूरज तुम्हारा

सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कमाल का नगमा पेश था किशोर कुमार की आवाज में, नगमात इन दीवार का और मौसिकी ओपी नैयर की। अगला नगमा सुनाने को जा रही है मीठी स्वर में लता मंगेशकर।

मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत लता मंगेशकर की स्वर में। मंजिल की इंतहा तक कोई बताए ऐ फैज, चला जा रहा हूँ चला जा रहा हूँ और हसरते बढ़ती जा रही है। ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है।

अमर गीत पेश था, आवाजें थी सुबीर सैन और लता मंगेशकर की। वो मेरे साथ बहुत दूर तक, वो मेरे साथ बहुत दूर तक सफर में रहा, कि उसकी याद का साया, कि उसकी याद का साया मेरे नजर में रहा।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी में पेश था ये नगमा और नगमात राजा मेहदी अली खान का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 55 साल की आयु में फैफन फैफ्तख यार औत माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुत का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह के मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 55 साल के आयु में फैफन फैफ्तख यार औत माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुत का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह की मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदा खानस्तांद द्री उर किए जाएंगे क्रेमाटोरियम दालवेक फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओफर फैक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार सुल्तान सिंह और परिवार जालिम सिंह के दुख में शामिल है।

और इस ट्यून का मतलब वहां सुनने वालों की उजाला रेडियो के जरिए यहां से लाया जा रहा है फरमाइश। एंड यारिख इस देन हाग के रहने वाला है अभय रोहन मोहन के आज 18वां जन्मदिन है, 18th verjaardag। अभय रोहन मोहन 18 jaar geworden vandaag, dinsdag 30 juni. Van harte gefeliciteerd, Abhay Rohan Mohan. Van harte. जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई और शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते, और ये भी प्रार्थना है कि तुम्हें खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से बचाए, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे। जनाह के रहने वाले अभय मोहन का 18वां जन्मदिन 18 फरवरी आज है, और इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर अभय ने खुद अपने आप के लिए ये नामा को मांग के हैं। सुनिए आप।

Den Haag के रहने वाला अभय मोहन का 18वां verjaardag आज है। इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर पापा अमरीत मोहन एंड मामा माधवी मोहन परा प्यारा बेटा के लिए एंड भाई आयुष मोहन भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ ये नामा को फरमाइश किया। अभय मोहन का जो देन हाक में रहते हैं 18वां verjaardag आज है। इस खुशी के मौके पर नामस पापा लीव पापा अमरीत मोहन प्यारा प्यारा बेटा अभय के लिए बड़े प्यार मोहब्बत शुभकामना आशीर्वाद के साथ ये नामा को फरमाइश करें।

Den Haag के रहने वाला अभय मोहन का 18वां verjaardag आज जन्मदिन की खुशी के मौके पर नानी जिंती जिंकू राय प्यारा प्यारा नाती के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार आशीर्वाद के साथ फरमाइश के Den Haag के रहने वाला अभय मोहन का 18वां verjaardag आज और इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर मौसी गायत्री पराग लालकू एंड मौसा अमर लालकू बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें

0: Den Haag kennen wel. Of hij mogen ka 18e verjaardag gaan zitten om die een keer goedje te maken per. Nog maar voor mij is keer Mausi gaat die para lalku en Mausa amar lalku. Piara piara beta ke waas de badhaiya shubkamna aur aashirbaad ke saath. Happy birthday to you. Ab hai Rohan Mohan 18e verjaardag jo ki aaj hai. Is jannamdin ke khushi ke mauke par इस बार आज ही हिल्दा मंसराम प्यारा प्यारा पोता के लिए बधाई और शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें काका सुदेश मोहन एंड फुआ विश्मा पराख बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत आशीर्वाद के साथ पेश करें सुनिए आप
1: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
2: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है

आज है, आज है मंगलवार 30 तारीख जून। Vandaag 30 juni को Den Haag के रहने वाला अभय मोहन का 18th verjaardag है। जन्मदिन की खुशी के मौके पर आजी हिल्डा मंसरा प्यारा प्यारा पोता के लिए, काका सुदेश मोहन एंड फुआ विश्मा पराग प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ नामा को फरमाइश के। अभय रोहन मोहन 18th verjaardag जो कि आज है, van harte gefeliciteerd। Namens de hele familie, namens Ujala Radio, Jeremdien, badaio, badaio, badaio, badaio, badaio. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Na de commercial break gaan we verder. Arbi Farmage, Ujala Radio Per.

जो वार उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश जारी किया जा रहा है। देन हाँ के रहने वाला अब है रोहन मोहन का आखिरी दफे आ रहा है इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर। इस बार जो नाम आप सुनने को जा रहे हैं अभय ने खुद अपने आप के लिए ये नामा को मांगे हैं। सुनिए

अब है मोहन का आज 18th verjaardag है, जन्मदिन के खुशी के मौके पर पापा अमृत मोहन और मामा माधवी मोहन पर आज प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ फरमाइश की। केकर है फरियारी, अब है मोहन का फरियारी, आज है 18th verjaardag, vandaag 30 juni, और इस खुशी के मौके पर छोटा भाई आयुष मोहन भाई के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ फरमाइश करें।

भाई रोहन मोहन का आज 18वां व्यवहार है और इस जन्मदिन की खुशी के मौके पर खासकर भाई छोटा भाई आयुष मोहन अपने बड़ा भाई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ नवा को फरमाइश किए।

वाला रेडियो के जरिए फरमाइश प्रोग्राम में जारी किया जा रहा है। सुनो वालों, आज दिन हाक के रहने वाला, आज मंगलवार 30 तारीख जून को दिन हाक के रहने वाला अभय मोहन का आखिरी दफे याद है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर इस बार नहमा को मांग करने वाला है मौसी गायत्री पराह लाल को एंड मौसा अमर लाल को बेटा के वास्ते बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार आशीर्वाद के साथ।

के रहने वाला अभय मोहन का 18वां व्यारा हाज है जन्मदिन के खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में माउसी गायत्री पराग लाल को एंड माउसा अमर लाल को बेटा के वास्ते बड़े प्यार दुलार मोहब्बत आशीर्वाद के साथ अभय मोहन का 18वां व्यारा हाज है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश करे हैं अमृत माधवी आयुष जिंती और हिल्दा यारख अभय के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ

अब है मोहन का 18वां verjaardag आज और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश अब है रोहन मोहन का 18वां verjaardag आज है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर पापा अमृत और मामा माधवी मोहन प्यार प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें

मंगलवार 30 तारीख जून और देन हाँ के रहने वाला अभय मोहन का 18वां फेयर्डा है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश पापा अमरीत एंड मामा माधवी मोहन प्यार प्यारा बेटा अभय मोहन के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ आशीर्वाद के साथ। देन के रहने वाला अभय रोहन मोहन अफसोस के साथ जितनी से फरमाइश था अब समाप्त होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश जो हमने पेश की है हम यही आशा करते हैं कि तुम्हें पसंद आया हुआ होगा। एक वेंचाओ अनहेल फैन फयाडा उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभय रोहन मोहन फन हार्द खफेल स्टेट नामस हेल टीम फन उजाला रेडियो नामस द हेल फैमिली मोहन नामस फैमिली पराग फैमिली लालकू की तरफ से अभय फन हार्द खफेल स्टेट मोय से फरियारी मनी आज। उजाला रेडियो के जरिए सुनने वाला फरमाइश देना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Sunnen wel een programma waar we zonder en na zonder jana. Mooi serieën.

0: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। इस गीत को गाई गई है, बनाई गई है, लिखी गई है सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों के नाम के साथ। मोई खदान तो एक दूजे के लिए फिल्म का नाम, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अब पंकज उधास एंड साधना सरगम, फिल्म मोहरा का गीत।

आशा भोसले एंड शमशाद बेगम जी, फिल्म किस्मत से गीत आप सुने। एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मोहम्मद रफी साहब अब हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

राकेश जी और आशा भोसले से। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं और एक बार फिर आशा जी हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार शमशाद बेगम के साथ।

कजरा मोहब्बत वाला फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl। और सुनने वालों एक और पुराना गीत अश्नी माता दिन की आवाज में।

0: Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer her.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Wahi radio station hai jo ki 24 ghante lagta hai. Aapko khidmat karte hain har ek roz, raat aur din, 24 ghante per dag. Ujala Radio. आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.nl उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उदित नारायण और साधना सरगम जी।

पहला नशा पहला खुमार, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम से आप सुने जो जीता वही सिकंदर। हाँ, फिल्म कसूर का एक गीत,

और मोहब्बत हो ना जाए। कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म कसूर का गीत। उजाला रेडियो है और जानकारी चाहिए आपको ना तो वेबसाइट पर आप देखें उजाला.nl।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों जो कि सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए बना रहा हूं। इत्मीनान से आप बैठ करके और सुनिए, पेश है आज का पहला गीत लता जी की आवाज में।

आजा ओ मेरे हमदम, लता जी की आवाज 1969 के फिल्म प्यार का मौसम में गीत पेश आई है और राहुल देव बर्मन संगीत से सजाए इस फिल्म में उन दिनों काम किए शशि कपूर के साथ आशा पारेख जी।

मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम गुनाहों का देवता और फिल्म बनाई गई 1967 नीखंतिन जीफनन जस्तख में। म्यूजिक कंपोजर यानी कि संगीत से सजाए इस गीत को शंकर एंड जय किशन, और इस फिल्म में काम किए जितेंद्रा के साथ राय श्री। ओजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल।

0: छोड़ गए
1: बालम, हाय मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। मुकेश जी के साथ लता जी को आप सुने इस गीत में। और देखा जाए तो 1949 फिरतख की फिल्म बरसात का गीत शंकर और जय किशन संगीत से सजाए इस गीत को। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों नरगिस के साथ राज कपूर जी।

कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में आप गीत को सुने। मदन मोहन संगीत से सजाइए। और सुनने वालों, ये नॉन फिल्म गीत है, यानी कि इस गीत को कोई भी फिल्म में नहीं डाली गई है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बाद अब इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे द मैन विद अ गोल्डन वॉइस, तलत महमूद साहब। हाँ, पेश है।

मेरा प्यार मुझे लौटा दो, द मैन विद अ गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने, और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम दर्द दे दियो, दर्द भरी गीतों के साथ पेश है।

है जहां ना खोलेंगे जुबां। मुकेश जी की आवाज में आप सुने 1961 के फिल्म ससुराल का गीत। शंकर जय किशन म्यूजिक कंपोजर और काम किए राजेंद्र कुमार के साथ सरोजा देवी।

0: Kjendel Taji se apsune 1951 1951 ke film Malhar se aur isme sangeetkar the un dino Roshan aur film me kaam ki hai Shammi and Kanhaiya Lal Moti Sagar ke saath mein Ujala Radio hi hai
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम

बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेमंत कुमार जी की आवाज और 1962 ने खंचिन त्वेयन जस्तक के फिल्म 20 साल बाद से निकाला हुआ म्यूजिक कंपोजर यानी कि संगीतकार खुद हेमंत कुमार थे और इस फिल्म में काम किए विश्वजीत के साथ वाहिदा रहा।

झूठ तेरे प्यार की कसम, जा जा जा बेवफा। गीता दत्त की आवाज 1954-59 के फिल्म आर पार का गीत, और इस गीत को संगीत से सजाए उन दिनों ओपी नैयर जी, और फिल्म में काम किए गुरुदत्त के साथ में शशिकला और श्यामा। ये उजाला रेडियो है और प्रोग्राम दर्द दिल पेश है दर्द भरे गीतों के साथ।

मेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, ऐ मालिक मुझे वापस बुला ले। मुकेश जी की आवाज़ 1959 के फिल्म बावरे नैन से निकाला हुआ रोशन संगीतकार, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों गीता बली के साथ जसवंत।

अब सुने लता जी की आवाज में, देखा जाए 1968 हानी खंतिन अख्तन जस्तख के फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त नई खंतिन अख्तन जस्तख के फिल्म, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल संगीत से सजाइए इस फिल्म में काम किए धर्मेंद्रा के साथ शर्मिला टैगोर एंड मुमताज जी।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और 1959 के फिल्म गूंज उठी शहनाई का गीत संगीत से सजाए यानी कि संगीतकार वसंत देसाई और इस फिल्म में काम किए उन दिनों राजेंद्र कुमार के साथ अनीता गोहा और अमिता। सुनने वालों आज का प्रोग्राम दर्द दिल में पेश है आज एक आखिरी गीत।

0: दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इस कुमत में वो
1: छोड़ो जी छोड़ो, ऐसी बनावटी बातें हमने तो ऐसी।

देखो जी देखो एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।